0: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੁੰਦੇ
1: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
0: ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ
1: ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਰਾਨ US ਪੀਸ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫ੍ਰਾਈਡੇ
2: BBC ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਜ ਦੇਖੀ
0: ਸੰਡੇ ਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ
2: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਾ ਦਾਵਾ ਜਲਦ ਹੋਗੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਹੈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੇਂ कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम में कई फलस्तीनियों को करना पड़ रहा है इजरायली कोर्ट में उनके खिलाफ घरों को खाली करने के ऑर्डर का सामना इन मामलों में से ज्यादातर के सेटलर्स ने किए हैं दर्ज क्या खिलाड़ियों के दिमाग में छिपा है जीत का नुस्खा न्यूरो साइंस की मदद से हो रही है ये जानने की कोशिश दिखाएंगे खास रिपोर्ट प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने खोजी एक ऐसी तकनीक जिससे कम होगी अस्पताल जाने की जरूरत साइड इफेक्ट्स भी होंगे कम स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में मैं हूं सारिका सिंह एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीद नजर आने लगी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वीकेंड दोनों देशों के बीच कोई डील हो सकती है और इसी वजह से ईरान पर हमले रोक दिए गए हैं हालांकि ईरान ने कहा कि किसी समझौते पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है और कुछ वक्त पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि ईरान और अमेरिका पीस डील के इतने करीब पहले कभी नहीं पहुंचे लेकिन सही वक्त आने पर सारी जानकारी साझा की जाएगी जैसे ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच डील का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जिस पर ईरान और अमेरिका की सहमति है वैसे डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं लेकिन अब तक जंग खत्म करने के लिए किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति नहीं बन पाई बीती रात इस नई घोषणा के कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बहुत भीषण हमले करने की चेतावनी दी थी लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने इस प्लान को रद्द कर दिया अपने बदले रुख को लेकर ट्रंप ने यह कहा
3: हमने अभी ईरान के साथ जंग खत्म करने को लेकर एक बहुत अच्छा समझौता किया है अब बस दस्तावेजों को आखिरी शक्ल देना बाकी है मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी शायद यूरोप में इस पर सिग्नेचर हो शेयर बाजार में 1,000 पॉइंट्स का उछाल आया है इसका मतलब ये है कि लोगों को ये डील पसंद आई अगर बाजार नीचे जाता तो इसका मतलब होता कि उन्हें ये पसंद नहीं है लेकिन मार्केट ऊपर है तेल की कीमतें नीचे आई हैं और आगे भी कम हो सकती हैं
2: लेकिन इन सबके बीच इसराइल की क्या पोजीशन है इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि इसराइल ईरान के साथ होने वाले किसी भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं था इस पर और जानकारी दे रहे हैं यरूशलम से बीबीसी संवाददाता उरे डेविस
4: The unofficial Israeli position is that the job against Iran is not yet finished.
5: इसराइल की अनऑफिशियल पोजीशन यही है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है बेशक इसराइल ईरान के ठिकानों पर हमले जारी रखना चाहता था लेकिन कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उसे ऐसा करने से मना किया बिन्यामिन नेतन्याहू को शायद बेमन ही ट्रंप के प्लान के साथ चलना पड़ा मुझे लगता है कि अगर कोई सहमति बनती है या डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं तो भी वो पीस डील नहीं होगी वो सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा उसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य तय नहीं होगा या इसराइल के लेबनान से हटने की कोई बात शामिल नहीं होगी और ईरान की जब्त की हुई संपत्ति के बदले मुआवजे की मांग भी उसमें शामिल नहीं होगी लेकिन हो सकता है

0: उसमें ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर बढ़ाने की बात हो और मेरे हिसाब से ईरान और अमेरिका दोनों चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से खुले।
1: Iranians and the Americans and the key thing I think that both Tehran and Washington want which is a reopening of the Strait of Hormuz.
2: ईरान ने ट्रंप की पीस डील पर इस ऐलान के पहले कहा था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया है और ऐसा अमेरिका के हमलों की वजह से किया गया है। इस पूरी जंग में हॉर्मूज एक अहम कड़ी रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का कुल 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है और दक्षिण एशियाई देश काफी हद तक इसी तेल पर निर्भर रहते हैं। ट्रंप के पीस डील को लेकर आए ताजा बयान का बाजार में पॉजिटिव असर दिख रहा है। तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है। बेंट क्रूड करीब 2% गिरकर $89 प्रति बैरल से भी नीचे पहुंच गया है। एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाली पीस डील को लेकर पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के ताजा बयान से भले ही उम्मीद बढ़ी है दोनों देशों में इस बार शायद किसी समझौते पर रजामंदी बन जाए और शायद शांति हो जाए। और हाल ही में दुनिया का ध्यान ईरान लेबनान और गजा में चल रही जंग की ओर गया और इसी बीच कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम में ऐसे फलस्तीनियों की संख्या बढ़ी जिन्हें अपने घरों से बेदखल किया गया। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 200 फलस्तीनी परिवार जिनमें 900 लोग हैं उनके खिलाफ इजरायली कोर्ट में बेदखल करने के मामले चल रहे हैं और ये मामले ज्यादातर वहीं बसे लोगों ने दर्ज किए हैं। इसराइल पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी के तौर पर देखता है जबकि फलस्तीनी चाहते हैं कि पूर्वी हिस्सा भविष्य में बनने वाले उनके देश की राजधानी बने। बीबीसी की मिडल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट योलान नेल उन फलस्तीनियों से मिली जिनके घरों पर कब्जा किया जा रहा है या जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
3: यरूशलम यहूदियों ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र शहर है जो इसराइल फलस्तीनी विवाद के केंद्र में बना हुआ है और हाल ही में इसराइल शहर के कब्जे वाले पूर्वी इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इससे यहूदी पहचान तो उभर रही है लेकिन फलस्तीनी पहचान मिटती जा रही है। पुराने शहर से बिल्कुल नीचे अल बुस्तान के करीब आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं। गजा की जंग शुरू होने के बाद इस इलाके में करीब 60 फलस्तीनियों के घर गिराए जा चुके हैं और कई दूसरे फलस्तीनी परिवारों के घरों पर ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। यरूशलम की नगर पालिका की योजना है कि यहाँ बाइबल की कहानियों पर आधारित पार्क बने जिसकी देखरेख सेटलर्स का ग्रुप करेगा। उन्होंने बीबीसी को बताया कि शहर को और खुली जगह चाहिए और कुछ घर दशकों पुराने थे जो गैर कानूनी तरीके से बने थे लेकिन फलस्तीनियों का घर बनाने के लिए इसराइली परमिट हासिल करना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने की वजह से उन्हें निकाला जा रहा है। फैयद अवद ने हाल ही में अपना घर खोया है।
0: परमिट पाने के लिए उन्होंने हमसे जो कुछ भी कहा हमने वो सब किया। उन्होंने हमारा भविष्य और बाकी सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को फिर से वहीं ला खड़ा किया जहां से हमने शुरुआत की थी।
3: पूर्वी यरूशलम में बाकी जगह इसराइली सरकार इसराइल के बनने से पहले यानी कि 1948 से पहले मौजूद यहूदियों की जमीन को कब्जाने के लिए कानून का इस्तेमाल करता है ताकि वहां सेटलर्स को बसाया जा सके। फलस्तीनी इसराइल के अंदर उन प्रॉपर्टीज पर अपना दावा नहीं कर सकते जो कभी उनकी थी ही नहीं। पुराने शहर में ये यहूदी स्कूल एक सदी पहले दंगों के बाद ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया था लेकिन एक मुस्लिम गार्ड मुफीद बशा के पिता ने यहाँ रहने के बदले इस जगह को आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। 60 साल पहले इसराइल ने इस इलाके पर 6 दिनों तक लड़कर कब्जा किया था लेकिन अब मुफीद बशा के परिवार को ये घर छोड़ना पड़ा। मुफीद कहते हैं कि उनके पिता ये सब देखकर दुखी होते।
4: उन्होंने किताबों और उस जगह को वैसा ही बनाए रखा सब कुछ और यही वो तोहफा है जो हमें उनसे मिला है।
3: दूरदक्षिणपंथी सोच रखने वाले लोगों के लिए इसराइल का यरूशलम डे फ्लैग मार्च तेजी से अपना वर्चस्व और नस्लवाद दिखाने का एक जरिया बनता जा रहा है लेकिन इस साल बड़ी संख्या में इसराइली पीस एक्टिविस्ट भी इससे जुड़ रहे हैं। उनका मानना है कि यरूशलम एक साझा शहर होना चाहिए।
5: हम दशकों से इस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम नाकाम रहे और आज इसराइली सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो शहर में यहूदी वर्चस्व को जल्द से जल्द मजबूत करना चाहते हैं, जो फिलिस्तीनियों के अधिकार या शायद उनकी मौजूदगी को भी बर्दाश्त नहीं करता।
3: अब इसराइल अल अक्सा मस्जिद के गेट की तरफ वाली फिलिस्तीनी प्रॉपर्टीज को जब्त करने के सरकारी आदेश को फिर से लागू कर रहा है। ये यहूदियों के साथ साथ इस्लाम में तीसरी सबसे बड़ी

0: पवित्र जगह मानी जाती है जिसे टेंपल माउंट कहते हैं। फलिस्तीनियों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए उनका समर्थन करें। बीबीसी संवाददाता यलांद नेल की रिपोर्ट।
1: और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका पहला मैच कल मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मैच में मेक्सिको ने 2 गोल दागकर दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। एक तरफ तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी तरफ जीत के तरीके जानने के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों के दिमाग की स्टडी की जा रही है। घबराइए मत, ऐसा कई सालों से हो रहा है क्योंकि फुटबॉल के खिलाड़ी पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं और अब कुछ बड़े क्लब्स न्यूरो साइंस का सहारा लेकर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन खिलाड़ियों का दिमाग कैसा होता है और कैसे वो और तेजी के साथ खेल सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
2: फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें 1 सेकंड में फैसले लेने होते हैं और बड़े क्लब्स इसमें महारत हासिल करने के लिए करोड़ों खर्चते हैं। खिलाड़ी पहले के मुकाबले काफी फास्ट हो गए हैं, लेकिन केवल एक एथलीट होना काफी नहीं है। गेम में आगे रहने के लिए कुछ क्लब्स अब केवल बॉडी पर ही नहीं बल्कि ब्रेन पर ध्यान देने लगे हैं। फिजिकल से ज्यादा अब मुख्य काम टेक्निकल और मेंटल है। फुटबॉल खेलते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या इसे ट्रेन करके और ज्यादा मैच जीते जा सकते हैं? ग्राउंड पर प्लेयर के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। सबसे एडवांस्ड क्लब्स हर मैच से करीब 14 लाख डेटा इकट्ठा करते हैं, यानी हर सेकंड में हर खिलाड़ी के लगभग 10 डेटा पॉइंट्स लिए जाते हैं और ये सब डेटा ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है।
3: हम उस पर 1% को देख रहे हैं, हम उस चीज को देख रहे हैं जिससे हमें छोटी सी बढ़त मिल सके।
2: खिलाड़ी कैसे मूव करते हैं, अभी तक ज्यादातर टेक का इस पर फोकस था।
3: हम उन एथलीट्स को देखते हैं जो बहुत ही कम टाइम में और सबसे ज्यादा दबाव में फैसले लेते हैं। ऐसे में ये समझ आता है कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पर कुछ तो हो रहा है।
2: हॉली एक प्रोफेसर, फुटबॉल खिलाड़ी, कोच और फुटबॉल मम हैं जो न्यूरोसाइंस और फुटबॉल के बीच के कनेक्शन पर रिसर्च कर रही हैं। वो कहती हैं कि फुटबॉल में खिलाड़ी अपने दिमाग के लगभग सभी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं।
4: हालांकि लोग मुझे एक एकेडमिक के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर मैं फुटबॉल खेल रही होती तो मैं अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही होती।
2: एक अच्छे फुटबॉलर का ब्रेन कैसा होता है, हमें इसके बारे में 2014 में पता चला जब जापानी वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने ब्राजील के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी नेमार के ब्रेन को स्टडी किया। उन्हें पता लगा कि जब वो अपने राइट एंकल को रोटेट करते हैं तो उनका दिमाग दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में कम एक्टिव होता है।
4: नेमार के कॉर्टेक्स में एक्टिविटी कम होना इस बात को दिखाता है कि उन्हें अपने पैरों को हिलाने में महारत हासिल है और ऐसा बहुत ही कम कोशिश के साथ किया जाता है।
2: ये दिखाता है कि कई सालों की ट्रेनिंग के बाद नेमार का ब्रेन इस तरह से तैयार हो चुका है कि वो काफी अच्छे से खेल सकते हैं। 1 दशक से ज्यादा समय के बाद विकसित होती डेटा टेक्नोलॉजी की मदद से क्लब्स अब दिमाग की और ज्यादा स्टडी कर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खिलाड़ी के ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है, और ये ट्रेनिंग खिलाड़ियों को खेल के दबाव से निपटने में भी मदद कर रही है।
4: खिलाड़ी कैसा खेल रहे हैं ये उनके इमोशनल स्टेट पर निर्भर करता है।
2: हॉली कहती हैं कि दिमाग के ये 2 हिस्से, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला, इन दोनों को एकदम संतुलन में मिलकर काम करना होता है। बहुत ज्यादा इमोशंस फोकस और सटीकता में कमी ला सकते हैं। ज्यादा कंट्रोल से आपका ब्रेन ओवरथिंक करने लगता है, जिससे आप स्लो हो सकते हैं।
5: अगर आप खेलते वक्त अच्छे से फोकस नहीं करते हैं और मान लीजिए कि आपका ध्यान पूरी तरह से भटका हुआ है, तो एक सटीक कॉर्नर लेना और मैच जीतने की कोशिश करना और भी मुश्किल हो जाता है, और यही वो छोटे छोटे अंतर होते हैं जो फर्क पैदा कर सकते हैं।
2: निकलस, जो कि लिवरपूल जैसे क्लब के साथ काम कर चुके हैं, वो खिलाड़ियों की ब्रेन वेव्स को फ्री किक्स लेने से पहले देखते हैं और उन्हें ये सिखाते हैं कि कॉर्नर या पेनल्टी से पहले कैसे शांत और पूरी तरह फोकस रहना है।
6: It feels like you're mentally...
5: ऐसा लगता है कि आप मेंटली बहुत क्लियर हैं।
2: ये काम कैसे करता है ये तो इंडस्ट्री का सीक्रेट है, लेकिन निकलस का कहना है कि इससे प्रदर्शन में सुधार हुआ है। लेकिन ब्रेन डेटा कभी कोचिंग की जगह नहीं ले पाएगा।
3: हम अब भी एक मॉडर्न डे फुटबॉलर को बनाने में शामिल हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं।
2: लेकिन न्यूरोसाइंस कोच को खिलाड़ियों का पूरा ब्यौरा दे देता है।
1: और अब देखिए दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत को बताया गया कि उन्होंने उत्तर कोरिया को उकसाने के लिए ड्रोन भेजने का आदेश दिया था और मार्शल लॉ को सही ठहराया था। अभियोजकों का कहना है कि इस अभियान से इलाके में तनाव बढ़ा और संवेदनशील जानकारी उजागर हुई। इसी साल फरवरी में उन्हें विद्रोह के लिए दोषी ठहराया गया और उम्र

0: हयात की सजा सुनाई गई। थाईलैंड के राजा की सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी बजराकित्यावा माहिदोल का 47 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो 3 साल से ज्यादा वक्त से कोमा में थी। वो प्रिंसेस पार्क के नाम से मशहूर थी। उन्हें सार्वजनिक जीवन और अपने कूटनीतिक करियर में निभाई गई अहम भूमिका के लिए याद किया जाएगा। सरकार उनकी याद में राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर सकती है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के शेयर आज यानी शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट हो गए और इसके साथ ही इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बन गया है और कंपनी ने एक शेयर की कीमत $135 पर लिस्ट की है और इसी के साथ मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। लेकिन अगर शेयर की कीमत कंपनी के सुझाए गए प्राइस से गिरती है तो वो ट्रिलियनेयर का ये स्टेटस खो सकते हैं। मस्क के पास स्पेसएक्स के 80% से ज्यादा शेयर है। ये कंपनी रॉकेट और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जिनका उपयोग अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी करता है। अल्बानिया में उस लग्जरी रिजॉर्ट परियोजना के विरोध में प्रदर्शन हुए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर का समर्थन मिला हुआ है। गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी तिराना की सड़कों पर उतरे और देश के एड्रियाटिक तट पर संरक्षित इलाके में प्रस्तावित इस परियोजना का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एडी रामा से इस्तीफे की मांग की। हालांकि प्रधानमंत्री रामा का कहना है कि इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। और इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस अब प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हजारों पुरुषों को हाई पावर वाली सटीक रेडियोथेरेपी देगी। इस नए इलाज की वजह से मरीजों को अस्पताल कम जाना पड़ेगा, कुछ साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होगा। बीबीसी के हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट डोमिनिक ह्यूज इस बारे में बता रहे हैं।
1: प्रोस्टेट कैंसर के लिए नया इलाज जिसे स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव रेडियोथेरेपी या SABR कहा जाता है, ये एक नई और बेहतरीन तकनीक है जो बहुत सटीक तरीके से रेडियोथेरेपी देती है। फेफड़ों में कैंसर के इलाज में पहले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्यूमर को कई तरीके से टारगेट करता है जिससे कैंसर के फैलने या दोबारा होने का खतरा कम हो जाता है। SABR के जरिए एडविन ने क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लिया। उनके लिए ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस था।
2: फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मेरे नजरिए से ये ट्रीटमेंट मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि ये दूसरे पुरुषों को भी काम आएगा और उन्हें इसके साइड इफेक्ट जैसी मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और उन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है।
1: पारंपरिक प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट में कम से कम 20 रेडियोथेरेपी की डोज होती है जिसमें मरीजों का बहुत वक्त और एनर्जी जाती है, लेकिन SABR ट्रीटमेंट के जरिए ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और वो भी 2 हफ्तों में 5 डोजेस के साथ। ऐसा माना गया था कि शुरुआत में हर साल लगभग 3,500 पुरुष जो कम या थोड़ा ज्यादा खतरे के दायरे में हैं, वो इस नए ट्रीटमेंट का ऑप्शन चुनेंगे।
3: लोगों का ट्रीटमेंट कम होगा इसीलिए उन्हें साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे और सही तरह के लोगों के लिए ये एक और ऑप्शन है और ये ऑप्शन वाकई बहुत अहम हो सकता है। हमें उम्मीद है कि पूरे इंग्लैंड में हजारों लोगों को इससे फायदा होगा और इसे अभी शुरू किया जा रहा है। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है।
1: हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हजारों पुरुषों के इलाज के तरीके को बदल सकती है। इसके साथ ही हर साल लगभग 50,000 अपॉइंटमेंट्स कम देने होंगे। ये नया ट्रीटमेंट तब आया है जब एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने मंत्रियों को सलाह दी कि प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग सिर्फ उन पुरुषों के लिए शुरू की जानी चाहिए जिनमें खतरनाक जेनेटिक वेरिएंट हो और जिनके परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री हो, क्योंकि यूके की नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी का कहना है कि स्क्रीनिंग से फायदों की तुलना में उससे होने वाले नुकसान ज्यादा हैं। बीबीसी संवाददाता डोमिनिक ह्यूज की रिपोर्ट।
0: इससे कम से कम प्रोस्टेट कैंसर के इलाज की नई उम्मीद जगी है। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBCSarika। बीबीसी दुनिया के साथ हम सोमवार को फिर हाजिर होंगे रात 10 बजे। और अब देखिए बीबीसी हिंदी का वॉडकास्ट, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ।
4: बिल्कुल जी, तुसी बीबीसी दी काफी खबरां दे गल्लां बतांदियां ने, ओह सुन सकदे हो। ते प्रोग्राम च थोड़ा जिहा अगे चलीए आपां, गल्लां बातां जिहड़ियां ने काफी नवें नवें गाने ते खबरां जिहड़ियां ने अज दे प्रोग्राम च आउंदियां ने। इक अद्धा गीत जिहड़ा सुनन दी कोशिश करदे आं जिहड़ा कि नवां आया बिल्कुल। ते इक नोरा फतेह दा वी आया, 5 घंटे पहले कहिंदे रिलीज़ होया अज। ते इह की कहिंदा गीत थोड़ा जिहा सुन लैंदे आं, फिर इस तों बाद आपां अपनियां गल्लां बातां जिहड़ियां ने जारी रखदे आं।

0: होता है, आप उससे आप क्या भाषा ट्रांसलेट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है. तो बॉलीवुड सिंगिंग और डिवोशनल सिंगिंग जॉनर्स हैं बस. जैसे एक एक फैमिली में दो तीन चार बच्चे होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें बेसिक ट्रेट सेम होते हैं बिकॉज पेरेंट्स सेम होते हैं, फैमिली कल्चर सेम होता है, लेकिन हर एक अपना अपना रास्ता चुन लेता है. तो बॉलीवुड से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन जो डिवोशन सिंगिंग है वो बचपन से ही हमारे हमारी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल रही है ऑलवेज. बहुत सारी पूजा पाठ की गई होते हुए मैंने देखा हुआ है. इट्स बिन अ पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग, तो मेरे लिए ये कुछ अलग से नहीं था. और जब मैंने शुरुआत की ऑलमोस्ट अबाउट 20 इयर्स अगो, देयर वर्न्ट टू मेनी यंग फेसेस या यंग वॉइसेस. ज़्यादा से ज़्यादा इस जॉनर को एजड, यू नो, थोड़े से ओल्डर जनरेशन से एसोसिएट किया जाता था, जो आज बिल्कुल नहीं है. आज आप देखेंगे इंडिया में भजन जैमिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहाँ पे सारे हर जनरेशन के लोग इकट्ठे आके अलग अलग जॉनर्स ऑफ, जैसे भजन है, कीर्तन है, शब्द हैं, सब इकट्ठे मिलकर गाते हैं. और बहुत बहुत पॉजिटिव माहौल होता है, हजारों में लोग मतलब स्टेडियम्स भर जाते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये जिसे हम आज ट्रेंड कह रहे हैं वो तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस इन आवर फैमिली.
1: या कई बार ऐसा लगता है कि जो डिवोशनल सिंगिंग है वो थोड़े मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, यंगस्टर्स शायद हम ना कनेक्ट कर पाए. तो आप क्या सोचते हो यंगस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए आपको कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, कैसे फ्यूजन करते हैं आप?
0: देखिए उसका जो सोल रहता है वो सेम रहता है. थोड़ा सा जो उसका प्रोडक्शन रहता है, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं या जो उसका सेटअप रहता है, तो वो थोड़ा सा बदल कर, लेकिन उसकी सोल बिल्कुल इंटैक्ट रख के उसी चीज को आज लोग पसंद कर रहे हैं. आज जितने भी यंगस्टर्स हैं वो वृंदावन जाके वहां पे जाके वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, या जितने भी तीर्थ स्थान हैं यू नो वहां पर जाते हैं, बाकायदा जाते हैं रील्स बनाने. लेकिन मुझे ये फर्म बिलीफ है कि उससे बहुत कुछ ज्यादा वो ले आते हैं वहां से, वो जो एक्सपीरियंस ले आते हैं वो. तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, बिकॉज अल्टीमेटली जिस दिन कोई भी एक यंग बंदा ये समझ जाता है कि इस चीज से मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, इस चीज से मेरी आइडेंटिटी बनती है, यू नो, इस चीज से मुझे एक अंदरूनी विश्वास आ जाता है, तो वो जिंदगी भर उसके साथ रह जाता है. एंड भजन कीर्तन हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया एवर सिंस, ये कोई आजकल की बात नहीं है. यू नो 16th सेंचुरी से हम कीर्तन करते आए हैं. यू नो जितने भी संत हुए हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, हर एक ने कीर्तन के जरिए ही लोगों तक जो भी सोशल मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाया हुआ है. तो हमारे लिए ये बहुत बहुत आम बात है.
1: What do you think, आजकल सोशल मीडिया ने हमें ज्यादा कनेक्ट कर दिया है या कोई और रीजन मानते हैं आप?
0: एब्सोल्युटली, सोशल मीडिया के अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा हैं. कि आज हम यहाँ बैठ के इंडिया में लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, या इंडिया में बैठे हुए लोग यहाँ पर इंटरव्यूज देखते हैं, यहाँ पर म्यूजिक सुनते हैं. देयर इज सो मच कल्चरल एक्सचेंज. अच्छा, लोग ये समझ पाए हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर इंसान बैठा है तो फिर भी वो इंसान ही है. एंड ही, यू नो, ही हैज सिमिलर इमोशंस, ही हैज सिमिलर नीड्स, ही हैज सिमिलर वांट्स. तो एक तरीके से लोग नजदीक भी आए हैं. लेकिन होता ऐसे है कि जब आप अकेले बैठ के अगर आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो या टेलीविजन देख रहे हो, तो आप मतलब आपको बाकी किसी को फेस नहीं करना पड़ता, आपको किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, तो लोगों को उसकी ज्यादा आदत हो गई है. तो ये जरूरी है कि लोग यू नो दे कम आउट अगेन एंड दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स. हम बने नहीं हैं यू नो अकेले अकेले बैठ के इस चीज एक्सपीरियंस करने के लिए.
1: बिल्कुल. कविता जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. जैसे आपने थोड़ी देर पहले एजुकेशन की बात की थी, अपनी एजुकेशन के बारे में, एट व्हाट एज आपने गाना शुरू किया, ये सब हमें बताएं.
0: श्योर. सो आई स्टार्टेड लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है पंडित जयलाल जी वसंत से. अबाउट मैं जब 4 साल की थी तब से मेरी मदर उन्होंने मुझे उस क्लास में एनरोल किया और गुरुजी से कहा कि बस मैं इसे आपके पास छोड़ के जा रही हूँ. और तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे बाकी बच्चे सीख रहे हैं वैसे ये भी सीख जाएगी, उसको इंस्ट्रूमेंट बजाना है या तबला बजाना है या उसे वोकल करना है, ये वो खुद

0: वाह क्या बात है, मेरे ना गूज बम्स हो गए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग
1: आई एम
0: है।
1: श्योर बहुत सारे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ग्रोन अप इन द 90s एंड इन 2000 ये गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी यू नो इन गानों से एसोसिएटेड है।
0: और पता नहीं इन गानों में क्या है, आज भी हमारा मन इनको ही सुनने को करता है, इतना मजा आता है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, आजकल के गाने समझ ही नहीं आते, आज भी मजा आता है 90s के गानों में।

0: मेरी ट्रू. और इतना ही नहीं, 90s के गाने आज रीमिक्स होकर दोबारा से लोग सुनते हैं. तो नहीं, आई मीन उनमें वो बात ही ऐसी है ना, 90s आप कहें या इवन 80s कहें या 60s 70s, आज तक लोग चीन में जाइए, रशिया में जाइए, आज तक राज कपूर जी के गाने सुने जाते हैं. यू नो इट्स बिकॉज वो उन गानों को बनने में, सुनने में बहुत सिंपल लगते थे, लेकिन बनने में कितना उसमें साइंस था, यू नो इतना ट्रेनिंग था उसमें. जिन लोगों ने उन्हें कंपोज किया, जिन लोगों ने उन्हें रिकॉर्ड किया, वो लोग इतने और इंस्टिंक्टिवली, मतलब ऑफकोर्स दे वर सीखे हुए थे, लेकिन इंस्टिंक्ट उनका इतना स्ट्रांग और इतना क्रिस्टल क्लियर था. उतनी ज्यादा मेरे ख्याल से तब डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे, तो जो काम होता था वो 5000% होता था. तो इस वजह से वो अभी तक टिका हुआ है.
1: जी कविता जी, हमें तो आप बड़े पसंद हो, आपको कौन पसंद है सिंगर्स?
0: थोड़ा सा मैं ओल्ड स्कूल ज्यादा हूँ, तो मैं आशा जी के बहुत गाने सुनती थी, अभी भी सुनती हूँ. ऑफकोर्स अनुराधा जी, अ लॉट ऑफ ओल्ड सिंगर्स. और मैं माइकल जैक्सन के गाने बहुत ज्यादा सुना करती थी. आई कंप्लीटली एडमायर्ड, मतलब एज एन आर्टिस्ट, यू नो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी म्यूजिक को प्रेजेंट करना है, इस मैंने उनको बहुत एडमायर किया है. एंड आई थिंक इवन टुडे, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जो अपने म्यूजिक को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैरी कर सकता है, आई एम कम्प्लीटली इन ऑ ऑफ दैट आर्टिस्ट. मैं खुद आई लव परफॉर्मेंसेज, इसीलिए आई लाइक पीपल हु आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज, जो ऑडियंस को एंगेज करके रख सकते हैं, यू नो एट द सेम टाइम उनका सिंगिंग बिल्कुल स्पॉट ऑन हो. तो ये क्वालिटीज जिन लोगों में होती हैं, जिन आर्टिस्ट में होती हैं, आपको पता चल जाता है कि अरे इनके शोज देखने में ना कुछ एक अलग सा चार्म है. तो बस ऐसे सारे आर्टिस्ट मुझे पसंद हैं.
1: लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट्स योर मैसेज फॉर द ऑडियंस?
0: माय मैसेज फॉर द ऑडियंस, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू नो इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो फार अवे फ्रॉम द मदर कंट्री, आज ये कंट्री आपकी मदर कंट्री हो गई है. लेकिन वो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान की दो माएँ थी, बस वैसे ही वो भी माँ है, ये भी माँ है. It's beautiful that you all have managed to keep the culture alive, the love for the tradition alive, the love for the music alive, pehnawa, khana, sara kuch abhi aapne itne pyar se usko alive rakha hai aur usko in fact better kiya hai. You know, kitne aaj subah humne jo parathe khaye the, I think the best one that I had eaten was shayad Chandigarh jaate hue raaste mein dhabe mein aur phir uske baad aaj. To it's wonderful and कंग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को जिन्होंने अपने कल्चर को इतने प्यार से संजोए रखा हुआ है.
1: थैंक यू सो मच कविता जी.
0: थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू जी.
1: इंडियन आइडल 13 वाले विनीत सिंह के नाल आज होवेगी गलबात. सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं. वेलकम विनीत सिंह.
2: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
1: क्या हाल है आपके?
2: एकदम बढ़िया. आप कैसे?
1: कैसा लग रहा है आपको कैलगरी आके?
2: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी थी. सो सबसे अच्छा तो इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है एंड आई एम क्वाइट एंजॉयिंग योर.
1: कभी कभी आने वाले को अच्छा ही लगता है.
2: आई नो.
1: सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताएं.
2: ओके, सो आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन एंड आई
1: स्टार्ट. इंडिया कहाँ से हो आप?
2: मैं इंडिया में, आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ. फिर मेरे करियर, बॉलीवुड करियर के लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा. तो फॉर लास्ट 20 years मैं मुंबई में रहता हूँ. बट मैं वैसे, मेरा होम टाउन जो है वो लखनऊ है और 20 साल से मैं मुंबई में हूँ और अब प्रॉपर मुंबई कर बन चुका हूँ.
1: बिल्कुल. और एक बात हम बता दें कि विनीत कैलगरी में माँ भगवती के जागरण के लिए आए हुए हैं, जो कि 13 जून को होगा. ऑल कैलगरी वाले बिल्कुल रेडी बैठे हैं इनको सुनने के लिए. विनीत, आप मुझे ये बताएं कि आपने रियलिटी शोज किए हैं और उसके बाद अब जागरण में लाइव परफॉर्म करना, ऑडियंस में बैठ के सबको देखना और भक्तों को उस हिसाब से गाना, आपको कैसा डिफरेंस कैसा फील करते हो आप?
2: आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बचपन में, मेरा जो करियर था, सबसे पहली बार जब मैंने गाया था स्टेज पे, तो वो इत्तेफाक से वो जागरण ही था. हाँ, मेरा एक दोस्त था और उसका एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, तो वो लोग जागरण करते थे और मैं सबसे पहले उनके साथ मैंने गाया था एक जागरण में. तो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड.

0: एंड आई थिंक उस वजह से ही वो ब्लेसिंग्स जो थी उस वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं होता है, क्योंकि मेरे लिए म्यूजिक, जब मैं बॉलीवुड शोज भी करता हूँ, फिल्मी गाने भी गाता हूँ, तो भी मुझे लगता है मैं ऊपर वाले से कनेक्ट करता हूँ, और जागरण में गा रहा हूँ तो भी मुझे वही लगता है। बट हाँ, एक एक अच्छी चीज ये है कि जब आज के जो यंग सिंगर्स हैं बॉलीवुड के, वो लोग अगर ऐसे डिवोशनल शोज या फिर जागरण या जगराते में गाते हैं, तो लोगों का ध्यान थोड़ा और ज्यादा उसकी तरफ जाता है, क्योंकि यूजुअली पहले जागरण या किसी भजन शोज में जो लोग गाते थे वो टिपिकल एक एज ग्रुप होता था, वैसी चीजें होती थी। तो अब भी आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इन टू दीज थिंग्स, सो दैट कि हमारा जो यूथ है वो भी कनेक्ट कर पाए अपने रिलीजन से। सो आई फील गुड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये शायद ऊपर वाला मुझसे करवा रहा है।
1: विनीत जी, बड़ी अच्छी बात है कि आज के जो यंग सिंगर्स हैं वो डिवोशनल सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुछ समय पहले जो डिवोशनल सिंगर्स हुए थे वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हुआ करते थे, तो आप इसके पीछे रीजन क्या मानते हो? यंगस्टर्स को कनेक्ट करना यंग सिंगर्स के लिए कितना इजी है, कितना टफ है, और सोशल मीडिया का रोल आप कैसे देखते हो?
0: सोशल मीडिया का तो रोल एक्चुअली बहुत बड़ा हो चुका है, और रही बात पहले क्यों ऐसा होता था, मुझे लगता है पहले ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो यंग सिंगर्स हैं वो लेते नहीं थे, क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक में ना थोड़ा चमक धमक और थोड़ा वो शोशा ज्यादा होता है, तो शायद उस वजह से वो यूथ जो हमारा है वो उसकी तरफ भागता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा है। अभी वी हैव स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड भजन जैमिंग इन इंडिया, जो कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो अभी यूथ को ये समझ आ गया है कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस का एक तबका है जो ऐसे रिलीजियस इवेंट्स को या भजन इवेंट्स को या जगरातों को बहुत मान्यता देता है। तो अब का जो यूथ है वो बहुत स्मार्ट है, और उनको ये पता चल गया है कि चमक धमक जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो अब इसमें लोग आ रहे हैं, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि म्यूजिक का कोई एक वो नहीं होता है कि आप यहीं पे म्यूजिक कर सकते हो, म्यूजिक हर जगह है, हर कड़कड़ में म्यूजिक है। तो डिवोशनल में भी म्यूजिक का उतना ही ज्यादा वो है क्रेज।
1: विनीत, जो रियलिटी शोज होते हैं वहां पे आपको फेम ऐसे मिलता है, पर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: absolutely.
1: आप सस्टेन करने के लिए कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं?
0: मुझे तो रियलिटी शो से बहुत बड़ी सक्सेस बहुत यंग एज में मिल गई थी, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था उसको सस्टेन करना। बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आपका जो काम करने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, वो बहुत ही अलग होता है। आप कैलकुलेशंस नहीं करते हो, आप दिल से जो ठीक लगता है वो करते हो। तो मुझे लगता है कि हम कितना भी कर लें, जो गलतियां हमें करनी है वो करनी है, और उन गलतियों से फिर हमें सीखना है। हाँ, ये है कि जो आपका ऑडियंस से कनेक्ट है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, और म्यूजिक से जो कनेक्ट है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अगर आपका जो प्रोफेशन है अगर आप उसमें अच्छा करते हो, अगर आप अपने काम में फोकस करते हो, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में आते हैं, बड़े से बड़े इंसान के लाइफ में आते हैं। तो मुझे लगता है काम पे फोकस बहुत जरूरी है, अपने काम से बस धोखा नहीं करना चाहिए। आई थिंक बाकी सब चीजें अच्छी चलती हैं लाइफ में फिर।
1: जी, जब आप बॉलीवुड के लिए गाते हैं तो रोमांटिक गीत भी होते हैं, तो हर एज ग्रुप को कनेक्ट करना थोड़ा इजी रहता है। लेकिन जब आप डिवोशनल सिंगिंग करते हो उस टाइम स्पेशली यंगस्टर्स को आप कनेक्ट करने के लिए कौन से फ्यूजन, कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हो?
0: देखिए, यंगस्टर्स को रिलीजियस इवेंट में अगर हमें कनेक्ट करना होता है, तो हम सबसे पहले तो आजकल मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको बचपन से ही अपने बच्चों को बेसिक गाइडेंस देना चाहिए हमारे रिलीजन के बारे में, ताकि वो यूथ उससे भागे ना। और क्योंकि हमें

0: जब तक किसी चीज की जानकारी नहीं होगी हमारा इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो सकता है। तो वो बचपन से मेरे घर पे मेरे पापा सुबह उठ के पूजा किया करते थे, तो वो मैं देखता था, तो वो मेरे दिमाग में मेरे वो चीजें बसती थी और दैट्स हाउ यू नो आई गॉट इनटू दीज थिंग्स। तो वो देना चाहिए और उसके बाद हमारा काम और इजी हो जाता है, हमको बस उसको थोड़ा सा सजा के थोड़ा सा घुमा के उसको प्रेजेंट करना होता है। जैसे हम सेम भजन गाएंगे, सेम माता की भेंटे गाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से गाएंगे, थोड़ा म्यूजिक पार्ट्स अलग होंगे, थोड़ा टेक्नो बीट्स आ जाएंगी, थोड़ा ड्रम्स आ जाएंगे, तो ये सब चीजें ऐड करनी होती है। बट इन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, वो अपने जो अपना जो कनेक्ट होता है ऊपर वाले से, अपने रिलीजन से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमसे ज्यादा पेरेंट्स कर सकते हैं, आपकी फैमिली कर सकती है। तो वो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सबको करना चाहिए।
1: आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है यंगस्टर्स की तरफ से?
0: बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी कैलगरी आया था सेम जगराते में परफॉर्म करने, और मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स वहां पे आए थे जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे कैलगरी और ओवरऑल कनाडा में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ का जो यूथ है वो अपने कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है। सो आई फील रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि यहाँ का यूथ बहुत ज्यादा यू नो दे आर वेरी हम्बल एंड दे आर वेरी कनेक्टेड टू देयर रिलीजन, सो विच इज अ ग्रेट पार्ट। एंड आई वॉज यू नो वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड टू be here to perform in that Jagran, or youth is
1: अच्छी बात आपने बताई है कि यहाँ का यूथ है जो वो ज्यादा कनेक्टेड है rather than India.
0: Absolutely.
1: किस उम्र में आपने गाना शुरू कर दिया था विनीत?
0: मैं जब 5 साल का था तब से मैं गाता हूँ। मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने 8-9 साल की उम्र में मैंने प्रोफेशनली गाना शुरू कर दिया था। तो तब से मैं स्टेज शोज करता था, देन आई केम इनटू दिस रियलिटी शो सारेगामापा, और वहां से फिर मैंने अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया और हियर आई एम।
1: फैमिली में कोई गाता था जहाँ आपको ही शौक था गाने का?
0: जी, मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस समय, तो उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला। सो शायद उनका सपना मैंने फिर पूरा किया, तो ना तो आई लॉस्ट हिम इन 2022, सो आई एम श्योर वो खुश होते होंगे जहां भी होंगे मुझे देख के कि यू नो आई एम डूइंग गुड और मैं उनके सपने को आगे बढ़ा रहा हूँ।
1: जी, आपको इंडियन आइडल में एक इमोशनल जर्नी के लिए भी जाना जाता है, आपकी बहुत वो लोग इमोशनल भी हुए थे, जजेस भी इमोशनल हुए थे, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमें?
0: जी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में, आपका जज्बा कम नहीं होना चाहिए और आपके अंदर का जुनून मरना नहीं चाहिए। तो मेरे साथ वही हुआ, और व्हेन आई वाज नॉट डूइंग वेल तो मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लोग मैसेजेस करते थे कि वी वांट टू सी यू, वी वांट टू हियर यू, और मैंने थोड़ा स्टेप बैक लिया था और मैं काम नहीं कर रहा था। आई वाज नॉट डूइंग म्यूजिक बिकॉज आई वॉज गोइंग यू नो थ्रू अ फेज जहाँ पे मुझे आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वॉन्ट डू दिस, बट देन आई रियलाइज कि यू नो इट्स नॉट द टाइम, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, आई एम टू यंग टू गिव अप, एंड दैट्स हाउ आई केम इन टू इंडियन आइडल, यू नो फॉर द पीपल हु हैव गिवन मी सो मच ऑफ लव थ्रू ऑल दीज ईयर्स। तो मैं उनके लिए आया और मैंने वहाँ कम बैक किया, और उसके बाद मुझे जितना प्यार मिला है, जितनी रिस्पेक्ट मिली है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पीपल हैव एक्सेप्टेड मी द वे आई कुड नेवर इवन इमेजिन। सो
1: आपने कभी सोचा था कि आप रातों रात इतने स्टार बन जाओगे बड़े?
0: मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे तो लगता है मैं अभी भी कुछ नहीं बना हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है। पर हाँ, ऊपर वाले की मेहर रही है मुझ पे, लोगों का आशीर्वाद रहा है, मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड का आशीर्वाद रहा है कि मैं लोगों के हिसाब से मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। बट मैं सच बोलूँ, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता हूँ, और जिस दिन मैं ये सोचने लगूंगा यू नो आई हैव बिकम समथिंग, आई थिंक मैं कहीं

0: जा पाऊंगा, तो मेरे लिए मंजिल अभी बहुत दूर है और मुझे बहुत मेहनत करनी है।
1: हमारे लिए आप बहुत बड़े हैं, आपके फ्यूचर प्लान भी बताइए हमें, क्या क्या करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर?
0: जी, तो फ्यूचर में बेसिकली मैं खुद की कॉम्पोजिशंस करने लगा हूँ। आई
1: ठीक है।
0: स्टार्टेड राइटिंग एंड कंपोजिंग माई ओन सॉन्ग्स, और विद इन फ्यू नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मेरे खुद के गाने रिलीज होंगे मूवीज में, जो जो कंपोज भी मैंने ही किए होंगे। तो लाइक पहले जैसे मैं अलग कंपोजर्स के लिए गाता था, अभी मैं खुद की कॉम्पोजिशंस गाऊंगा जो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। एंड होपफुली, गॉड विलिंग, वो गाने बहुत बड़े होंगे, और बस मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए उसके लिए।
1: किस टाइप की सिंगिंग पे आप आने वाले समय में ध्यान देना चाहते हो? डिवोशनल, बॉलीवुड, एडवर्ट?
0: सी, बॉलीवुड मेरे लिए हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने बॉलीवुड को अपने पूरे 20 साल दिए हुए हैं, और उसके पहले जब मैं बना बोल सके तो वो सारे साल भी मैंने बॉलीवुड को ही दिए हुए हैं। तो वो, क्योंकि मैं मुंबई शिफ्ट ही उसके लिए हुआ था, तो मेरा ऑफकोर्स उधर ध्यान रहेगा। बट हाँ, बीच में मेरा एक बचपन में मैं जागरण करता था, डिवोशनल शोज करता था, और फिर जब मैं मुंबई आया मेरा फोकस बॉलीवुड पे हो गया था। तो वो जो गैप था वो मैंने अब थोड़ा कम करने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि आई बिकम अ वेरी रिलीजियस गाय नाउ। मैं जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको समझ आता है कि सुकून आपका इन्हीं चीजों में है, असली सुकून। बाकी दुनिया में सिर्फ बेचैनियां, परेशानियां मिलती हैं। तो मैं उस सुकून की तलाश में अपने रिलीजन की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रे करता हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। तो मुझे लगता है ये एक और तरीका है भगवान को, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का, कि
1: बिल्कुल।
0: आपने जो भी मेरे लिए किया है मैं इस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं डिवोशनल में भी अब उतनी ही शिद्दत से एंटर करूंगा वापस से, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा शिद्दत और सच्चाई चाहिए होती है आपके म्यूजिक में। सो आई होप कि मैं अच्छे से कर पाऊं।
1: ऐसा करने से आप कनेक्टेड भी रहते हो
0: जी,
1: ऑल द टाइम।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
1: वी नीड व्हाट्स योर मैसेज फॉर आवर ऑडियंस?
0: मेरा एक ही मैसेज है कि सैटरडे को हमने बहुत ही भव्य जगराता रखा है, और मतलब कैलगरी में धीरे धीरे धीरे धीरे ये जगराता 12th एडिशन है, और ये धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गया है। और इस बार हमने डेरा बैंक्वेट में रखा है, जहाँ की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। तो मैं चाहता हूँ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, क्योंकि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है कि माता रानी के दर्शन हो आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, और अगर आपकी कोई भी अगर आपने कुछ मांगा था और वो पूरा हुआ है तो उसके लिए थैंक यू बोलने आइए। तो दोनों रीजंस हैं, अगर कुछ मांगना है तो भी आइए, थैंक यू बोलना है तो भी आइए, और हमारे साथ प्यारी प्यारी सी भेंटे गाइए, और हम इस रात को बहुत ही एक अनफॉरगेटेबल रात बनाएंगे, और माता रानी का जागरण हम साथ में करेंगे।
1: बहुत शुक्रिया विनीत, थैंक्स फॉर कमिंग।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: ए संजीव विनीत सिंह, जिन्हां नूं तुसीं इंडियन आइडल 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसे भी उमर दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते, पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060, जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
3: ट्रक चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ट्रकां दी इंश्योर